उपैतुमां देव सखा कीर्तिशमणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धि

आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवी मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं

समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।
1: ओम गणा गणपति

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नति का आध्यात्मिक प्रवास।
1: आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

मालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतव समे गृहे निच देवी मातरम् श्रियं वासय मे कुले आर्द्राम्बु

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।

ओम शनैश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम पुच्छनायकाय नमः, ओम नवग्रह रक्षाम कुरु कुरु नमः, ओम मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु तेषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं विक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चित मनोहरति नाथ भवानत एहि। ओम नमः श्रीमन बलभद्र जय विजय अपराजित भद्रम भद्रम कुरु कुरु स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं बटुक भैरवाय आपदुद्धरणाय महानमस्याय स्वरूपाय दीर्घारिष्टं विनाशय विनाशय नाना प्रकार भोग प्रदाय मम। आपण जेव्हा दुसऱ्या करता म्हणतो त्यावेळेला त्याचे नाव उच्चारून यजमानस्य असं म्हणून पुढे म्हणावे। सर्वारिष्टं हन हन पच पच हर हर कच कच राजद्वारे जयं कुरु कुरु। व्यवहार लाभं वर्धय वर्धय रणे शत्रुं विनाशय विनाशय वीणापत्ययोगं निवारय निवारय संत्युतिप्तिं कुरु कुरु। पूर्णं आयुः कुरु कुरु स्त्री प्राप्तिं कुरु कुरु। हुं फट स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते विश्वमूर्तये नारायणाय श्री पुरुषोत्तमाय रक्ष रक्ष। युष्मदधिनं प्रत्यक्षं परोक्षं वा अजीर्णं पच पच विश्वमूर्ते अरिन हन हन। एकाहिकं द्व्याहिकं त्र्याहिकं चातुर्थिकं ज्वरं नाशय नाशय। चतुरधिकान वातान अष्टादशक्षयरोगान अष्टादश कुष्ठान हन हन। सर्वदोषान भंजय भंजय तत्सर्वं नाशय नाशय। शोषय शोषय आकर्षय आकर्षय। मम शत्रुं मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय। विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय। विघ्नान हन हन दह दह पच पच मथ मथ। विध्वंसय विध्वंसय विद्रावय विद्रावय। चक्रम गृहीत्वा शीघ्रमा गच्छा गच्छ चक्रेण हन हन। परविद्यां छेदय छेदय चतुर्शीति चेटकान विस्फोटय नाशय नाशय। वातशूला विहत दृष्टिन सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पदान। आपरे बाह्यांतरादि विवंतरिक्षगान अन्यानपि कश्चित देशकालस्थान। सर्वान हन हन।

अक्षरो मंत्रः समुख्यायाम स्वाहातो वा। पुढील मंत्र हा 22 वेळा उच्चारावा। हरहि ओम उच्चिष्ट देवे नमः डाकिनी सुमुखी देवी महापिशाचिनी ओम ऐं ह्रीं ठाठ। द्वाविशत ओम चक्रधरायाः अहम रक्षाम कुरु कुरु सर्व बाधा हरणि देवे नमो नमः सर्व प्रकार बाधा शमनम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। फट श्रीम ओम कुब्जिका देवे ह्रीं ठस्वाहा शीघ्रम अरिष्ट निवारणम कुरु कुरु। देवी शाबरी क्रीं ठस्वाहा शारीरिकं भेदाहं मायां भेदय पूर्णम आयुः कुरु। हेमवती मूल रक्षां कुरु चामुंडाई देवे नमः। शीघ्रं विघ्न निवारणं सर्व वायु कफ पित्त रक्षां कुरु। भूत प्रेत पिशाचान घातय जादू टोणा शमनं कुरु। सती सरस्वती चंडिका देवी गलम विस्फोटकान विक्षित्य शमनं कुरु। महाज्वर रक्षयं कुरु स्वाहा सर्व सामग्रीं भोगं सत्यं दिवसे दिवसे देहि देहि रक्षां कुरु कुरु। क्षणे क्षणे अरिष्टं निवारय दिवसे दिवसे दुःख हरणं मंगलकरणं कार्य सिद्धिं कुरु कुरु। हरहि ओम श्री रामचंद्राय नमः। हरहि ओम भूर्भुवस्वः चंद्रतारा नवग्रह शेषनाग पृथ्वी देवी आकाश निवासिनी सर्वारिष्ट शमनं कुरु स्वाहा। आयुरारोग्यमैश्वर्यं वित्तं ज्ञानं यशोबलं नाभिमात्रे जले स्थित्वा सहस्त्रपरिसंख्यया जपेत् कवचमिदं नित्यं वाचां सिद्धिर्भवेत्तत्तः। अनेकविधिना भक्त्या कवचसिद्धिश्च जायते शतमावर्तयेदत्सु मुच्यते नात्र संशयः। सर्वव्याधी भयस्थाने मनसास्य तु चिन्तनं राजानुवशतां यान्ति सर्वकामार्थ सिद्धये। अनेन यथाशक्ति पाठेन शाबरी देवी प्रियतां मम शुभं भवतु। नवनाथ सिद्ध मंत्र। ओम नमो सिद्धनवम अंगुष्ठाय नमः मुखाय नमो नमः। शीर ब्रह्म धुधुक्कार शीरसे ब्रह्म तनम तनम तनम नमो।

ख्याल में शब्दों की क्या महत्व है। धन जोवन, धन और जोवन, तो गुरु जी की बंदिश है गुरु ज्ञान प्रकाश घोष जी की। कह रहे कि धन जोवन नदी नाव संजोग, जैसे नदी के साथ नाव का संपर्क है। धन जोवन नदी नाव संजोग, कहत मुनि ज्ञानी, जग में सब करत अपनी अपनी

श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जी की आवाज में संत मीराबाई की भक्ति रचना। इसे संगीतबद्ध किया है पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी ने।

0: भक्ति सुधा आत्मोन्नति का आध्यात्मिक प्रवास।
1: आइए सुनते हैं श्रीनिवास खड़े जी के संगीत निर्देशन में गुरु नानक जी की भक्ति रचना। इसे गाया है पंडित उल्हास कशाळकर ने।

श्रोताओं सुनते हैं वसंत देव की गीत रचना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और स्वर है पंडित राजन मिश्रा और अनुराधा पौडवाल का।